0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसके मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: खोई है गुड़िया तेरी, क्या है किसी ने मारा? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? नाना क्या फिर तुझसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी?
1: कौन?
2: काबली वाला।

माया हम भी गए जग में गरज महान। हम मस्त नजर की कतार दिल के उतर गई पार इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में। दिल भी गया हम भी गए जग में गरज महान। हम मस्त नजर की कतार।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

हे सुनने वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम जोयतोस से परिवार कुंज बिहारी श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते अगस्त के 11 तारीख को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटा उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी। अम्स्टरडम जोयतोस न्यू लांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराई कुंज बिहारी की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। पहले सूरीनाम नेपाल स्रात के निवासी जो थी। अम्स्टरडम जोयतोस से श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए अगस्त की 11 तारीख को 11 अगस्त को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटे उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी। अम्स्टरडम जोयतोस न्यू लांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्देवराई कुंज बिहारी की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले नेपाल स्रात के निवासी जो थी। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस ये की गई है बीते हुए अगस्त के 19 तारीख को नेखंतिनोखस्तिस को। इनकर अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस हो चुके हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार कुंज बिहारी के दुख में शामिल है।

0: मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन जब से देखा मैंने तुझको बस शायरी आ गई। शैलेंद्र सिंह की आवाज, फिल्म बॉबी का गीत, एक बार फिर किशोर कुमार के साथ लता जी को आप सुनेंगे।
1: हाँ? क्या कहा?

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदेबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो देबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

आशिक न कहो, गम में चुपचाप मरे उसको आशिक न कहो, जो जमाने से डरे उसको आशिक न।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम जोयतोस से परिवार कुंज बिहारी श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते अगस्त के 11 तारीख को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटा उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास, फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, आम्स्टरडम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराय कुंज बिहारी की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। पहले सूरीनाम नेपाल स्रात के निवासी जो थी। आम्स्टरडम जोयतोस से श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए अगस्त की 11 तारीख को 11 अगस्त को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटे उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, आम्स्टरडम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराय कुंज बिहारी की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले नेपाल स्रात के निवासी जो थी। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस ये की गई है बीते हुए अगस्त के 19 तारीख को नेखंतिनोखस्तिस को इनकर अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस हो चुके है। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार कुंज बिहारी के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम ओस्ट फ्रोलिक स्ट्रैट से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्तियार और बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्रैट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुक्खू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम फ्रोलिक स्ट्रैट से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्तियार और बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्रैट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुक्खू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार के दिन में 3:30 बजे मोरखन जोंदाख मोरखन मेदाख हालफीर 3:30 बजे किए जाएंगे। वैसखार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त यार और बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़का नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसफाल्स्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त यार औत बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसफाल्स्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार दिन में 3:30 बजे मोरखन मेदा खालफीर किए जाएंगे। वेस्ट हार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार अकलू परिवार सुखू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: दिस इज बियांका दामिंग फ्रॉम द एनवीबी। ऑन दिस मोमेंट zijn er geen bijzonderheden onderweg en tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: You are Holland Hottest Radio Station.

तेरा चेहरा जब नजर आए, अरिजीत सिंह की आवाज और फिल्म का नाम सनम तेरी कसम। आपके साथ साथ और हजारों लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो को।

तुम्हारी आरजू के पलकों में कोई पलता है, तुम्हारी आरजू के साये में हाँ कोई पलता है। मोहित चौहान की आवाज में गीत को आप सुनिए, श्वेता पंडित हिस्सा लेंगे। इट्स यू आर उजाला रेडियो।

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

बिनकोर ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खयाई बिनकोर ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदना उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम जोयतोस से परिवार कुंज बिहारी श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते अगस्त के 11 तारीख को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तक यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटा उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, आम्स्टर्डम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराय कुंज बिहारी की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। पहले सूरीनाम नेपाल स्रात के निवासी जो थी। आम्स्टर्डम जोयतोस से श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए अगस्त की 11 तारीख को 11 अगस्त को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तक यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटे उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, आम्स्टर्डम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराय कुंज बिहारी की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। सूरीनाम में पहले नेपाल स्रात के निवासी जो थी। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस ये की गई है बीते हुए अगस्त के 19 तारीख को नेखंतिनोखिस्तिस को, इनकर अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस हो चुके हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार कुंज बिहारी के दुख में शामिल है।

0: था।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम ओस्ट फ्रोलिकस्ट्रात से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार औत बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुक्खू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम फ्रोलिकस्ट्रात से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार औत बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुक्खू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार के दिन में 3:30 बजे मोरखन जोंदाख मोरखन में दाख हालफ फिर 3:30 बजे किए जाएंगे। वैसखार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़का नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार दिन में 3:30 बजे मोरखन मेदा खाल फीर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेर वैक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार अकलू परिवार सुखू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

सात बजकर मेरे प्यारे सुनने वालों 20 मिनट गुजर चुके हैं। At this 20 minute over the clock fun save of 12, 10 minute for the clock fun half. उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे। तहदिल से स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय सुनने वालों को। आज ये 12 तारीख जो सितंबर का दिन है, शनिवार है, वीकेंड है, बहुत खूबसूरत दिन गुजरा है, कहीं पर खूब सूरज अपना शक्ल दिखाए हैं, कहीं पर कुछ बरसे भी हैं, और इस वक्त हम बाहर देख रहे हैं तो ठंडी हवा भी चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर होंगे आप सेफ होंगे, एयरकंस लेकर वरम नरम गरम। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है।

मेरे प्यारे सुनो, सैटरडे नाइट फीवर पेश करने आए हैं आज इस शनिवार की रात्रि को, 12 तारीख सितंबर को, लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से ये प्रोग्राम फिर एक बार पेश किया जाएगा। तो सभी प्रियजन वालों को जो चून किए हुए हैं घर पर, जो सुन रहे हैं शायद अपने परिवार के साथ, अकेले में शायद सुन रहे होंगे या अपने दोस्तों हित प्रेमियों के साथ, तो तहे दिल से स्वागत करता हूं। वारदानोक, तो शुभ रात्रि आपको भी हम कहते हैं, दिल लगाकर काम करना। या वन डिजाइनर हिल फिल है नारो जाला रेडियो, और वो भी अपने काम पर और चस्त लगा के, और कौनो कौनो जब बहुत ढेर सन्नाम के आदमी काम करते हैं तब बॉक्स एकदम वॉल्यूम एकदम ऊपर, और सब मिलकर गीत गाते हैं भी, गुनगुनाते हैं भी। तो एंजॉय यूलियाफन दिन्स नख दिन्स मेरे प्यारे सुनो लो, ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर फॉर्मूला आपको तो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं दोहराता हूं कि एपर्स के नाम 8 बजे के बाद आप सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे। जो लोग ऐप करेंगे स्टूडियो में 0 3 3 0 0 0 उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे। एक लोकल मेरे ही लिस्ट का एक लोकल होंगे। ये मैं हां गेव ऑफ यू स्नेल नंबर विल ऑफ रुस्तग। और जो लोग ऐप करेंगे जल्दी से उनके गाने भी जल्दी से हम चला पाएंगे। एंड पेर ब्लॉक हैप यू सो सेफ अख नंबर्स फॉर मेंस व्हाट इट कैन स्पेल। दोस आपको मालूम होना चाहिए कि देरी से आप अगोरेंगे तो आपका गीत साइड ट्वेल्थ ब्लॉक में आएंगे या डेढ़ ब्लॉक में आएंगे। तो 0 3 3 0 0 0 आप अभी से ऐप कर सकते हैं स्टूडियो में। और मेरे प्यारे सुनो, आपके हर एक कामकाज जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते जब भी आपको उजाला रेडियो को जरूरत पड़े, उजाला रेडियो का जरूरत अगर पड़े आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो आप दफ्तर को तार कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हो। सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे फमान रख तुम्हें 7 रख स्मोर्खंस फनाफ 3 यूर तो 3 मिदाख 3 यूर कुंतु कंतोर पहला 020-409-0807 020-409-0807। मार नतुल्लक लगातार 24 घंटे 24/7 आप मिल कर सकते हैं info@ujala.nl। हमारे सोशल्स पर चेक कीजिएगा, वहां पर भी तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तार का नंबर, ईमेल www.ujala.nl पर भी तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और अगर आप जा ही रहे हैं सोशल्स पर तो उजाला रेडियो के साथ जोड़ ही जाइए। व्हाट्सएप से फ्रेंड्स ऑफ फेसबुक, गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो ऑन टिकटॉक एंड नेटवर्क ऑफ इंस्टाग्राम एंड अबोनेरियर। आप अबोनेर करें उजाला रेडियो का जो यूट्यूब चैनल है। एंड डन मिस्ट यू सो नेरहंस मेरिट्स फन यू आर अन इवनिंग इन होलैंड हो जाए। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन पेश करने जा रहा हूं हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। एंजॉय योर वीकेंड, शुभ वीकेंड आप सभी को कहते हैं, शुभ शनिवार।

कभी अलविदा सीकर हम ना कहेंगे, अब भी तो शुरू भयल है प्रोग्राम। An evening in Holland, मेरे प्यारे सिनवालो, that was the king of Hindi pop, मेरे प्यारे सिनवालो, आज का opening selection। युवाड़ उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं मेरे प्यारे सिनवालो, मैं हूँ रतन रामदुलारे पांडे और आप सभी को फिर एक बार तहदिल से स्वागत करते हैं। लाइफ एंड डायरेक्ट युवाड़ के स्टूडियो रतनाम से बना रहा हूँ आज फिर एक बार प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स, नए हैं पुराने सभी इसमें शामिल हैं। और एक हैट्रिक, एक ट्रियो हम चलाएंगे, एक पुराना कलाकार उनकी याद में आज हम उनका नगमाएं जो है प्रोग्राम बनाते वक्त उनके कुछ गाने हमारे नजर में आए हैं, तो उनका जो मुझे पसंद है तीन गाने लेकर आए हैं। नखायकत अख्तर अलकार फॉर इमान स्पेल दी ओक फन हेल अव लोकल्स आउट लात में वेट अल शे ऑफ ये दैट विल। Het is geen soul, het is in ieder geval Tani Chalta Nagma hè? Tino. घड़ी की तरफ मैं देखो तो तीन मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनो हलो सरे सात बजकर एन वखान नार अत फोल्गन नंबर शेखर कुमार फ्यूचरिंग मिस्टर

शिखर कुमार और मिस्टर ब्लैक मेरे प्यारे सुनने वालों, स्विंग इन द नंबर और जिसमें भी शामिल था याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे अपना शनिवार, अपना वीकेंड या इके फंदाग हेरलक करेला गegeten met droge vis chur materi एकदम vers vers kinel meteen gemaakt en asambe shwiti। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी कुछ ना कुछ चटक मटक खा रहे होंगे, कुछ गर्माया गर्म पी रहे होंगे। बस आप भरपूर एंजॉय करें। 023630008 पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम से गीत चलाऊं। अभी से कह देता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, अज न्यू नोट खात ऐप दन सीचे इन द ब्लॉक के फन 9-3, ठीक है। इतने नाम हो चुके हैं कि आज से 9 बजे एकदम फॉल अब 9-3 में रमत है। अगर आप ऐप करेंगे तो उसमें हम आपको शामिल करेंगे। 023630008 और जो लोग ऐप करेंगे फ्रखीच नाम नीत एन अशिब्लीफ हैप गडुल्ड। अच्छा गीफ ओक आन, हाँ गीफ ओक आन कि तुम मांगे गो रुस्तख नुमर कि तुम मांगे गो द्रुक नुमर। तो चलता दिस इज झलक दिखला जा, अपना झलक हम दिखा रहे हैं हीरो निवार, आप अपना झलक अब दिखाइए।

झलक दिखला जा या ब्यूटीफुल मुका सिंह की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी का अपना मनचाहा फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और लोकल का ये प्रोग्राम अभी हम बढ़ रहे हैं 8 बजे के ब्रेक की ओर। हाँ जी, 8 बजे के ब्रेक की ओर और 8 बजे की इश्तिहारों के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, आप तमाम एफर्ट्स के लिए हम शुरू करेंगे फुल हॉर्ड फ्रॉम बिन कम्स फंड एपीएस, हम की चलाना शुरू करेंगे आप सभी के लिए। आप भी चाहते हैं या नन मुझे एप 020-363-0008 व्हाट हैप्पी खरीद स्थान रानी डट्टई, पेश करता हूं इनका मैशिप, डीसी मैशिप।

0: ब्यूटीफुल रानी रटाई का ये देसी मैशअप मेरे प्यारे सुनने वालों सेवा में जो हमने आप तक पेश किया है। त्रिनी पॉप की ओर आपको ले चलते हैं किमलिन बुढ़राम और इंदर कन्हाई।
1: मुझे तुमसे प्यार था
0: ओहो 100 साल पहले।

या 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इंदर कन्हाय और क्या नाम है, किमलिन बुधराम जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनो, एक आखिरी गीत होंगे और इस आखिरी गीत के बाद हम 8 बजे की इश्तिहारी की ओर बढ़ चलेंगे। इश्तिहारों के बाद मेरे प्यारे सुनो, हम फिर सेवा में हाजिर रहेंगे आप सभी का लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और तभी हम शुरू करेंगे एपर्स के नाम से गीत चलाना। आपको ये भी मैं बता दूं मेरे प्यारे सुनो वालो, द ब्लॉक फन 8 tot 9 इज वॉल और द ब्लॉक फन 9 tot 10 कुनो नोग 2 mensen, और जो देरी से एप करेंगे या दी खान दान इन द ब्लॉक ये फन 10 tot 11, ऐसे चीज हुआ जाए इतना द्रुक। अब हम क्या करी, आप एप कर रहे हैं मार, कभी कभी आप स्नेल से मांगे अपन गाना, दान गाने का निक संदून वहां निमान फोर्ट रहकर। तो हमने एक गीत को तैयार करके रखा है, एक पाल गसेग है दत बाद में किसी के लिए जो पुराने लोकल्स पसंद करते हैं, एक है अपन लेजेंड फन फ्रूखर, उनके 3 नगमाएं, छोटा छोटा नगमाएं हैं, तो तीनों हम मांगे लग बजावे किसी के लिए। अख्तर अलकार तनी चलता नगमा है, विल ये दैट साइन लात तीव वे तो पते, ठीक है, एंड अनदर्स हाइक हम सोमा दराए यू ही यू ही। एक आखिरी गीत मेरे प्यारे से नॉलो, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

मेरे प्यारे सुनने वालों, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। आप ही का मन चाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये सैटरडे नाइट फीवर। आप सुन रहे हैं सभी लाइव एंड डायरेक्ट जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं यू आर के स्टूडियो रतन नाम से। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी को। जो लोग बाट में चून किए हुए हैं, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आराम पर से हत फिर 3 मिनट ओवर द क्लॉक फन। अख मेरे प्यारे सुनने वालों, 8:14 गुजर चुके हैं और यहाँ से एपर्स के नाम हम गीत चलाना शुरू करने जा रहे हैं। मैं से आल्सो न्यू खत एप नार द स्टूडियो अप 02-3630008 तो आपका गीत शायद हम 10 बजे के बाद चला पाएंगे, ये आपको मालूम रहे। और जितने लोग भी ऐप किए हैं, आप सभी से बस यही कहेंगे हैप खडोल्ट, आपका गीत जरूर से जरूर हम चलाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहला ऐप जो हमें स्टूडियो में जो आए हैं वो था हार्लेम का आइलिन जी की ऐप। तो आइलिन जी को हम कहेंगे बहुत बहुत दंकीवेल धन्यवाद। उम्मीद और आशा करते हैं आइलिन जी कि आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे अपना शनिवार अपना वीकेंड। साथ देने के लिए आज थैंक यू, आपने फिर जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो के साथ, उसके लिए हम बेहद खुशी हैं। तो आइलिन के नाम ये नगमा पेश करता हूँ, जुबेर नौटियाल का एक नगमा जो फिर से गाया और सजाया गया है। आइलिन के नाम है ठालिम।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरे प्यारे सुनने वालों, 10 मिनट बाकी है सरे 8 बजने में और आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। रोटरडैम शहर का भैया जॉनी कालीचरण भी प्रोग्राम से हमेशा जुड़े रहते हैं और जब भी ये जुड़े रहते हैं तो जरूर से जरूर ऐप किया करते हैं। तो जॉनी कालीचरण जी रोटरडैम दंग के वेल आपके ऐप के लिए एंजॉय योर वीकेंड और वत लो कि आप फिर एक बार चून किए हुए हैं उजाला रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। एकदम फर्स्ट फ्रॉम द पेयर्स नगमा निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूं। एक नगमा जो गाकर सुनाएंगे जोचना और एक पुराना बकेंड नंबर आप जानते होंगे जरूर, इन्होंने फिर से सजाए हैं बनाए हैं रेमी लक्ष्मण जी के साथ फॉर जॉनी कालीचरण जी एट रोटरडैम।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनवालो, बड़ी दुख दीना रे बड़ी दुख दीना, करे जवा में हाय राम, बड़ी दुख दीना जोचना जी की आवाज मेरे प्यारे सुनवालो, एम प्रख्तक बखलाए दो रेमी लक्ष्मण जी, एकदम फर्स फन फर्स, अभी अभी निकल कर सीधे यहाँ स्टूडियो में पेश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सुनवा, मैंने आप सभी को कहा है कि तीन नगमाएं हैं ऐसे एक बहुत ही पुराने एल्बम से जो आज मेरी नजर में आए हैं, और मैंने सोचा ये एल्बम एलपी जो था इसमें से बहुत सारे गीत इन्होंने गाए हैं उस पर, लेकिन ये तीन जो आज अभी मैं सुनाने जा रहा हूं, फंदेश दरी हिल टिकट मेस, और सबसे ज्यादा भी हमने इन तीनों को चलाए हैं, और मैंने आप सभी से पूछा कि कौन या किसके लिए मैं ये तीनों चला सकता हूं, मुझे बता दो व्हाट्सएप पर। और प्रभा जी बिना सुने सिर्फ मेरी बातों पर आपने कहा कि चलो मेरे लिए, तो प्रभा जी है तमसन हम सेंट्रम डंकी वेल एक होप टच ऑफ फन यूनिवर्स खात खनीत पुराने हैं। हम बात कर रहे हैं मस्ताना और चेस्ट्रा, और उनके साथ एक लेजेंड जो अब हमारे बीच नहीं रहा, रमूर्ति लक्ष्मण जी, इनका एक एल्बम और इनकी काफी मशहूर नगमाएं जो इन्होंने मस्ताना के साथ गाए थे, उन दिनों काफी मशहूर था। मैं निकाल रहा तीन, और ये तीनों आपके नाम करता हूं, प्रभा जी आयताम सदाम सेंद्रम, तीनों नगमाएं आगे पीछे आप सुनेंगे हियर ऑन यू आर एंड थैंक यू वेल फॉर द स्टेमा, और आपके लिए

मैं तो हार गई गोरी, मैं तो हार गई, तेरी नैना ने हाय मुझे मार गई, और आग लागे तन मन में दिल का परा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी के सामना, और कुंची रहा एक बार बड़सन लागे एख प्रख्तक नुमर्स रमूर्ति लक्ष्मण जी प्रख्तक बखलाइज दौर मस्ताना और चसरा जिसमें बड़े बड़े थे जैसे कि उस्ताद हफीज खान जी, द लेजेंड शहीद जी ऑफ द ड्रम, और फोकल भी कर रहे थे, हफीज खान भी फोकल कर रहे थे, सैक्सोफोन पर शारिफ बारिक भी है उसमें, खलील जी या प्रख्तखुर नौ प्रभा जी, उम्मीद और आशा करते हैं कि आपने एंजॉय किए हुए होंगे। हम दनहा की ओर बढ़ चलते हैं, दनहा की ओर जहां उषा रहती है और उषा ने ऐप किए हैं। थैंक यू ऑल उषा, आपके ऐप के लिए एक है फिर मोयू नंबर। तरह तरह के लोग ये इसे गाने लगते हैं। सो हैप्पी मतन पॉपुलर नंबर इधर इन बखिंतम सिंह। जब ये रिलीज हुआ कुछ हफ्तों पहले, हमने तुरंत यहाँ उजाला रेडियो पर अपने प्रोग्राम में गीत को पेश किया है, और एक दूसरा वर्जन है लेकिन खूबसूरत है, और फिक प्रसाद इनका एक नगमा उषा जी के नाम अदनाह। नोखमा उषा जी, थैंक यू वेल आपके लिए।

फिक प्रसाद मेरे प्यारे सुनो वालों, तेरे बिन तू जला दे दो है ये मेरे प्यारे सुनो वालों। और वो भी 12 मिनट तक गुजर चुके हैं सरे 8 बजकर। मेरे प्यारे सुनो वालों, एप्पल्स के नाम गीत करता हूँ हमेशा शनिवार जब भी प्रोग्राम सजाता हूँ सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड आर आई क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से। और बहुत सारे लोग ऐप करते हैं और जिस तरह से ऐप अंडर आए हैं उसी तरह से हम नगमाएं चला रहे हैं इस वक्त लोगों के लिए, हमारे प्रिय सुनने वालों के लिए। एंड आप सभी जानते हैं एक हाउ ऑन सेटन फील फैमिली जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, चुन किए करते हैं, हमेशा ऐप भी किए करते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद हम कहते हैं। आप भी चाहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आपने कभी ऐप नहीं किया है तो आज कोशिश कर लो 020-363-9000, तो यकीनन आपके लिए भी हम गीत चलाएंगे। वेल इस शो की आखिरी घंटा में हम दुआली मसूल्स तू जाने तो धमाकेदार नगमाए उस आखिरी घंटे में हम नहीं करते। वेल आल्सो सोमख स्पेशल डाग सेन जैसे दिसंबर में सो तू जाने तो जितना फॉर्मूला है सब बदल जाते हैं खुद बखुद।

जरा मैं झांकू, हम फिर एक बार अम्स्टरडम की ओर आपको ले चलते हैं, और वो भी अम्स्टरडम सेंट्रम, जहां रिया कल्लू जी इत्मीनान से प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। रिया कल्लू जी को हम कहेंगे एंजॉय योर वीकेंड, लेकर रिलैक्स न्यू, लेकर टॉयस मेट यू आर, और आपके नाम हमने एक गीत वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंदर सागर मलिक जी की आवाज में खूबसूरत गीत रिया कल्लू जी के नाम।

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में, सागर मालिक जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों। नौ एक मेरक दत्त शारदा एट हार्लेम, सॉरी एट आरएनएम या आरएनएम मुतसैन, शारदा जी काम पर जा रहे हैं एंड फोर दत्त से खात फिट्स, से खात फिट्सन नार हर वर्क। तो शारदा के नाम खूबसूरत गीत हम पेश करने जाएंगे और शारदा जी थैंक यू वेल फॉर अफ स्टेम एंजॉय और दिल लगाकर काम करना एंड वी वेट टोटन फोन की। ये नगमा जो मैं चलाने जा रहा हूँ मैं आपके नाम करता हूँ और नगमा कुछ इस तरह से है जो संजय योढ़ा गीत गाकर सुनेंगे। वारिस ये रिसत हाँ।

संजय योढ़ा मेरे प्यारे सुनने वालों, एक आखिरी गीत इस घंटे का, और इस आखिरी गीत के बाद खाओ अनदर ब्रेक फॉर नेक्स्ट। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

Ja. De formatie Too Crazy uit Suriname. Babuji Sarad hier in Tjalo. मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और इस वक्त हो रहे हैं 11 मिनट ओवर द क्लॉक फॉर 9 बजकर 11 मिनट गुजर चुके हैं। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, लाइफ एंड आर की वार के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूँ फिर एक बार प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स। मेरे प्यारे सुनने वालों, और एपर्स का नाम गीत कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ हमारी लिस्ट पर मेरे प्यारे सुनने वालों जिन्होंने ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए अब 03 3 3 9 9 9, वो है अम्स्टलफेन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर शनिवार। और एक गीत जो काफी पॉपुलर है इन दोनों का, देवेंद्र सिंह सिवनाट और सविता सिंह जी का गाया हुआ ये नगमा

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे से नॉलो मैं भावरा तू है फूल ये दिन मत भूल कि जवानी लौट के आए ना। सविता सिंह और देवेंद्र सिंह सिवना जी की आवाजें। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एनन खावनार मैं स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो भी सुतमेड़ शहर में, तो उनके नाम गीत हम करेंगे और वो भी कुमार सानू टुगेदर विद इंडियन टेम्पटेशन एक पुराने एल्बम से निकाल रहा हूँ। फोर मैं स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी आयोजित सुतमेड़ Dankjewel, zwaag voor je appje.

जिए जा मेरे प्यारे सुनवालो, जिए जा तुम खूब। द टाइगर कुमार सानू टुगेदर विद द इंडियन टेम्पटेशंस। मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ तो 7 मिनट बाकी हैं और वो भी 9:15 में। सिर्फ मिनट फुट क्लॉक फन हाल हफ्तीन हो चला है और आपको अगले गीत की ओर ले चलते हैं। एपर्स के नाम गीत करता हूँ मेरे प्यारे सुनो वालो, आप ही चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं। डन मुझे अपना 020-363-0000 020-363-0000। हाँ जी, मैं देखता हूँ कि अगले गीत जो हमने तैयार करके रखा है अमस्टरडम के आईसी जहांगीर के नाम हम करेंगे। केवल आईफी आपके ऐप के लिए हमेशा आप चून किए करते हैं और सदियों से आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए दिल से शुक्रिया डंकीवेल। तो आईफी जी, निजाम वाकिद हुसैन का गाया हुआ ये नगमा मैं आपके नाम करता हूं। अनहेल मुए साथ रखा

वादिया मेरा दामन और रास्ते मेरी बाहें। निसाम वाकित हुसैन की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। बैक टू द फ्यूचर में अगले गीत मैं पेश करने जा रहा हूं और वो भी रतनम सिराम का जो रहने वाली है। रोहिणी कल्लू जी के नाम करूंगा तो रोहिणी कल्लू जी डंकी वेल आपके ऐप के लिए ट्यून करने के लिए हियर ऑन यू आर और एंजॉय योर वीकेंड एंजॉय योर शनिवार। एक बहुत ही खूबसूरत गीत विम दमरी का गाया हुआ विद द इंडियन टेम्पटेशंस। मैं नाम करता हूं रोहिणी कल्लू जी के लिए अर्थ श्री नाम रोटरडम।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, और ये बात तुम ही समझाओ हमें कि इस हार करें तो कैसे करें। द लेजेंड रेम दमरी जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, अगले गीत ख्रोनिंग से जो ऐप आए हैं, ख्रोनिंग शहर से बेती जी का ऐप, डंकीवल बेती जी, आप जब भी सुनते हैं आप एंजॉय कर रहे हैं और आप ऐप करते हैं ये बताने के लिए। एक खूबसूरत गीत हमने तैयार करके रखा है बेती जी, जो आपके नाम हम करेंगे, बस आप भरपूर एंजॉय करें इस गीत को, इस प्रोग्राम से अतिथि नाइट फीवर को, और नटूरलक अपना वीकेंड अपना शनिवार को खुरुचे सानी दरिंदार एंड डंकी वेल बेती जी।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी का पॉपुलर सॉन्ग फिर से सजाया और गाया गया है। हियर ऑन यू आर हमने आप तक पेश किया है और अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और गीत जो है हम नाम करेंगे मार्सब्रुक में जो रहते हैं हिरेंद्र जी और चित्रा जी, इन दोनों के नाम करेंगे। और डंकी वेल हिरेंद्र जी और चित्रा जी, आप कैब के लिए आप भरपूर एंजॉय करें आपका शनिवार, आपका वीकेंड, और खास करके ये नगमा और प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर हमेशा जुड़ने के लिए और आपके कैब के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, और अब की बार गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ इल्से रामदयाल जी के लिए। नीट आउट डन हॉल्डर फनाख मार आउट मॉरिशियस। एंजॉय योर वेकेशन, एंजॉय यू आर एंड एंजॉय दिस सॉन्ग इल्से रामदयाल जी। Daar is het 2 uur later, geloof ik. Fijn dat je het na de orb hier afgestemd bent op jou haar. Je giet op je naam. Or mijn repertoire is een hollo is giet gebaat. Breek je hoor. Breek je ons paar af. Sabine Sefira, milinge.

0: बुढ़ाऊ, आजकल के जमाने में तू कौन दामाद मांगे रे?
1: या सब दामाद मांगे, मफाउस में कफड़िया के ना मांगे। Well, what is amiss me? We zijn toch allemaal mensen. जिस पे दिल लग गया तो समझो लग गया, वो नहीं देखता है कि क्या कलर है उसका, गरीब है अमीर है, ये दिल कभी वो चीज नहीं देखता है। मेरे प्यारे से नौ, मैं देखता हूं घड़ी की तरफ तो धीरे धीरे हो रहे हैं 11 मिनट ओवर द क्लॉक फन 3, 11 मिनट गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट 10 बजकर। ये है आप ही का मनचाहत फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो, मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और आप सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एकदम लाइव एंड आर आई क्यूआर के स्टूडियो रतन नाम से। और जितने लोग भी ऐप किए हैं 0 3 3 9 9 पर, उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूं और 2 घंटे चला चुके हैं, अब 3rd घंटे में हम जा रहे हैं। मैं देखता हूं शायद आखिरी घंटे में भी मुझे जाना पड़ेगा, आपके लिए चलाना पड़ेगा मुझे गीत, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एप्स आए हैं अंदर। एंड नेचुरली कि मैं नो स्टेज वेल ऐप हो जब तक हम बोला बे हो स्टॉप तू जाने तो। दनाह की ओर हम आपको ले चलेंगे जहां से मीकर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो मीकर डंकी वेल आपके ऐप के लिए। एंड मीकर या एक बार संदाग इन योस्ता दनाह इवन लेकर gesweerd, lekker broodjes gegeten en wat shopping gedaan. मजा आया, बहुत दिनों के बाद गए थे। तो मीके फाइन दैट यू हैव गेस्ट बेन, एंजॉय, यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और एक है फिर देंगे कि एक मोय मेरी जैसे हसीना का दिल मिक्स। The King of Hindi Pop, Umar Vagi Tuzain, Mika ke naam karta hoon, Adnan.

0: परेशान।
1: या मेरी जैसी हसीना का ये मिक्स एंड दैट वाज नेचुरलक द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी डिजाइन एंड फोकस में पापे मान। मेरे प्यारे सुन वालों, मैं देखता हूं तो 9 मिनट बाकी है सारे 10 बजने में और एपर्स को हम कहेंगे हैप खडोल्ट अल्स्टुब्लिफ। ये मुत एफ वक्त फोड़ा आपके नगमा हम चला पाएंगे, लेकिन सभी के लिए हम चलाएंगे जो लोग ने ऐप किए हैं, घबराइए मत। डनहाग की ओर, सॉरी हम अम्स्टरडम की ओर, या एक मुतना डनहाग में एक नेट खवेस वहां न्यू नार अम्स्टरडम। अम्स्टरडम की ओर आपको ले चलते हैं जहां कतरीना प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कतरीना डंकी वेल आपके आपके लिए, एंजॉय योर वीकेंड सैटरडे, एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में सागर मलिक का गाया हुआ एक नगमा मैं कतरीना का नाम करता हूँ। डंकी वेल फॉर यू एपी कतरीना, दिस इज फॉर यू।

दिल था अकेला अकेला और साथी मिला अलबेला, सपने में भी सोचा ना था अपना कोई बन जाएगा। द सिंगर ऑफ रोमांस बीस महावीर जी की आवाज। वखान नार स्वाख इन नॉर्थ होलैंड, जहां पर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हेडवाल्डो मरखड़ी जी, बितिया रानी शरीदा और दुस्का। तो हेडवाल्डो जी को, मरखड़ी जी को, शरीदा जी को और दुस्का जी को अलमालदार अन मोये सैटरडेआवंड। गनीत फन युली सैटरडेआवंड, गनीत फन इट वीकेंड, गनीत फन इट मोये सॉन्ग व्हाट इक फॉर युली गा स्पेलन, एंड नैचुरली van Saturday Night Fever and you are Ujala Radio.

या राहुल बिचन मेरे प्यारे सुनने वालों, इनकी आवाज में गीत आप सभी ने अभी सुने हैं। हम अम्स्टर्डम की ओर चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। अम्स्टर्डम में सबिता भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। सबिता दंक्यूवेल, सबिता जी आपके ऐप के लिए फैन नच अफगस्टम बैंक ऑफ यू आर उजाला रेडियो और सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड। और मैंने गीत जो तैयार करके रखा है सबिता के नाम एट अम्स्टर्डम, द लेजेंड शहीद वागित हुसैन।

द लेजेंड शहीद वागित हुसैन मेरे प्यारे सुनने वालों, और तुरंत अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे एकदम फेयर्स फॉर रिपेयर्स, लकी सिंह का गाया हुआ नगमा। हम नाम करेंगे माइस के नाम जो इस वक्त फकांसी से है कहूं। एंजॉय माइस, एंजॉय डंकी वर्ल्ड फॉर यू।

शिखर कुमार की आवाज। मेरे प्यारे सुनो वालों, नहीं देखा कभी पहले ना पहले कभी देखा, खूबसूरत गीत सेवा में जो पेश हुआ है मेरे प्यारे सुनो वालों। इस वक्त मेरे प्यारे सुनो वालों स्टूडियो आए थे 11 मिनट गुजर चुके हैं। रात्रि में 12 बजे तक की प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर पेश करूंगा हियर ऑन यूआर लाइफ एंड आरएक यूआर के स्टूडियो रतनराम से। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम लाड़े पांडे और लोकल्स सेवा में 60 बजे से अब तक पेश कर रहा हूं। और एपर्स के नाम मैं गीत पेश कर रहा हूं इस आखिरी घंटे में। मेरे प्यारे सुनो वालों, खावन तालामाल में सोल्स दून खली सोल के नगमाए, इजी लिसनिंग सॉन्ग्स, रोमांटिक सोल्स आप तक हम पेश करेंगे। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते उजाला रेडियो का जो वेबसाइट है www.ujala.nl पर जरूर खड़ारी वगैरह तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगा। अमस्टरडम में सुन रहे हैं प्रोग्राम उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं सत्या जी। तो सत्या जी दंकेवेल आपके ऐप के लिए एंजॉय योर वीकेंड। बेहद खुशी है हम कि आप फिर एक बार चून किए हुए हैं। आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजेश जगरूप और प्रशांत रामजतन की आवाजें, ये नगमा आपके नाम करता हूं सत्या जी। आयतम सदम

जाने मन तुम हो कहां, तन्हाई और मैं हूं यहां, तेरे बिना जिंदगी कुछ भी नहीं, बस यादें तेरी बातें तेरी मेरे दिल में बसी। प्रशांत राम जतन मेरे प्यारे सिनोल और राजेश जगरूप जी, मैंने फरमासी म्यूजिक फरमासी स्टाइल्स। हम तुरनहाउट की ओर आपको ले चलेंगे। तुरनहाउट में सुन रहे हैं प्रोग्राम, जुड़े हुए हैं सुनीता एंड डॉक्टर खुशी। थैंक यू ऑल सुनीता फॉर योर अपीयर एंड ओक थैंक यू ऑल खुशी फॉर द स्टेम। फॉर यूली बैड हैपिक संजय योद्धा क्लार्सन। खनीत फान यूली वीकेंड, खनीत फान यू आर एंड खनीत फान Saturday Night Fever.

संजय योढ़ा मेरे प्यारे सुनवालो, मैं अगर कहूं या प्रख्त खनुमर हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में, और तुरंत आपको ले चलेंगे एम्स्टर्डम की ओर। एम्स्टर्डम में भैया सुनील प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। दंकिवल सुनील जोड़ने के लिए उजाला रेडियो के साथ और ट्यून करने के लिए बेहद खुशी है हम कि सुनील आप ही सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एंड आलते तलशेदा दूध। तो आप ये कश उठाते हैं एक छोटा सा ऐप पठाने का, उसके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद। सुनील, ये गीत जो मैंने तैयार करके रखा है रोहित और रायन फन फरमासी स्टार्स अच्छी नाम सुनील के नाम।

आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। रोहित और रायन फन फरमात सी द स्टार्स सूर्य नाम जिसका हम स्क्रीवनिंग की ओर आपको ले चलेंगे अब की बार आमस्टरडम से सीधे स्क्रीवनिंग की ओर जहां भैया लक्ष्मण प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो को सुन रहे हैं भैया लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया लक्ष्मण जी चून करने के लिए आपकी ऐप के लिए चून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेहद खुशी है हम कि आपने चून किए हुए हैं और ऐप किए अगले गीत मैं आपके नाम करूंगा लक्ष्मण भैया जी और आपको तो मालूम है लक्ष्मी जी तो हमारे दिलों में है शिखर कुमार का गाया हुआ एक नगमा आपका नाम कर

गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, तुमसे ये मैंने वादा किया है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराता भी मैं। खूबसूरत गीत किशोर कुमार का एक नगमा, शेखर कुमार ने अपने ही रंग और ढंग में फिर से गाए हैं, सजाए हैं और आप तक बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ हमने प्रोग्राम में पेश किया है। वैसे तो हॉलैंड में रहते हैं लेकिन स्वागरी हमार सर्वन नाजी और मेरा जो सरहज है दूर वहां मेक्सिको में, मेक्सिको मैं वहां प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं, सुन रहे हैं प्रोग्राम से द नाइट फीवर। तो स्वागरी सर्वन नाजी और सरहज जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम कहते हैं चून करने के लिए, ऐप करने के लिए, इतनी दूर जाकर भी आपने चून किए हुए हैं। तो बस उजाला ही उजाला है इस वक्त आपके पास, आपके दिलों में। और मैंने गीत को तैयार करके रखा है मुका सिंह की आवाज में, मुका सिंह की आवाज बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत गीत भी गाएंगे एक प्यार वाला। तो स्वागरी सरवन जी के लिए एंड फॉर सरहज, थैंक यू वेरी मच।

मुखा सिंह की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत आप सभी ने सुने हैं, एंड दिस इज सागर मलिक।

और आप सभी ने साथ दिए हैं। बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया गया है, खूबसूरत नगमाएं हमने कोशिश किया है निकाल कर आज की प्लेलिस्ट से आपके सेवा में पेश करने का। बस यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी ने भी भरपूर एंजॉय की है। जितने लोग भी आज साथ दिए हैं, ऐप किए हैं, चून किए हुए हैं और दूर दूर से भी लोग, देखो ना, मॉरिशियस, कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका और सूरीनाम, जितने लोग भी ऐप किए हैं, कुछ लोग तो कहा कि द्राय नेक्स्ट हो मैं वन के खासो वीर वेख, लेकिन छोटा रूप में भी जिन लोग ने सुने हैं बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे प्यारे सुनो, अगले हफ्ते मैं आप सभी की सेवा में फिर आएंगे सेवा करने। अब दून सहावन बुधवार के रात्रि को 16 सितंबर को पेश करेंगे बैक टू द फ्यूचर। 17 सितंबर को वो है बृहस्पतिवार, दिल की आवाज। और ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर शनिवार 19 तारीख को हम पेश करेंगे। आज मेरे प्यारे सुनने वालों, साधने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू लीवेल। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

अखियों को रहने दो अखियों के आस पास। सागर मलिक जी की आवाज में गीत हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। अब वक्त ऐसा ही आ गया है कि अब मुझे आखिरी नगमा अफसोस के साथ आप सभी की खिदमत में पेश करने का वक्त आ गया है, और इस आखिरी नगमा के बाद हम यहां से रुखसत होंगे, स्टूडियो से रुखसत होंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज भरपूर